0: listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Scam alert. Never share your CUNY login password or MFA. Please remember the following. Never share your passwords or MFA factors with anyone. Campus and CUNY IT will never ask for it. Do not respond to an MFA prompt if you did not initiate the login yourself. Do not click on links or open attachments in suspicious or unexpected texts and emails. If you think you may have provided your password or MFA factor, clicked on a suspicious link, or opened a suspicious attachment by mistake, please contact your campus help desk for assistance. This is a CUNY scam alert announcement.
2: Hey, your college students, log on to your Cardinal app. Hit the link and tune in to ycradio.org. My name is Lisa Ray, and you're listening to ycradio.org, the voice of today's generation.
3: Dhoka dhadi chetavani. Apna CUNY login password ya MF. A. कभी साझा न करें। कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें। अपने पासवर्ड या MF ए कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। कैंपस और CUNY IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MF ए अनुरोध का उत्तर न दें। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह CUNY की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
4: My name is Bio Fiami, New York City guitarist and president of the York College Music Club. This is YCRadio.org, the voice of today's generation.